शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

0: नमस्कार, मैं नाईकवाड़े नगर तालुका मोहर जिला सोलापुर से सरपंच शेख बोल रहा हूँ। मैडम, आपने जो व्हाट्सएप फरमाइश पेश किया वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। वो आपका जो कल का व्हाट्सएप फरमाइश शो था मैडम, आपको बता दूं कि मैं बहुत तेज बारिश हो रही थी और उतनी तेज बारिश में भीगते हुए आपका पूरा शो सुन लिया। इतना बढ़िया मुझे वो लग रहा था। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि रेडियो में पानी जाने की संभावनाएं हो रही थी, लेकिन फिर भी सारे लोग देख रहे थे मुझे और घर वाले भी कह रहे थे कि इतना तुम तेज बारिश में ठहर कर जो सुन रहे हो, तो उनको काफी अलग लग रहा था ये बात। और सबसे एक अहम बात मुझे ये कहनी है मैडम कि कल एक श्रोता ने एक एसएमएस में जो बातें आपको लिखी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और जैसे शब्दों का उन्होंने किया था, इस्तेमाल किया था एसएमएस में, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। उस श्रोताओं के साथ साथ मैं सभी लिसनर से एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो दोबारा कभी अपने वॉइस में या फिर टेक्स्ट मैसेज में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जहाँ आपके दिल को ठेस पहुँचे या दुख हो। और क्योंकि हम वॉइस भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, हम रेडियो पर भेज रहे हैं, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। रेडियो तेरना ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम सारे लिसनर से जुड़ सके और तमाम लिसनर से जुड़कर हमारी दोस्ती और भी गहरी हो जाए। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत प्यारी आवाज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि श्रोताओं की तरफ से कोई भी मतलब ऐसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाए। उस श्रोता ने लिखा कि मैं आपके लिए क्या किताब बनाकर भेज दूं क्या, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन श्रोताओं से कि वो बिल्कुल भी ऐसे वैसे एसएमएस ना लिखे और वॉइस में भी ऐसी कोई बात ना कहे, अपनी मर्यादा में रहकर वॉइस और एसएमएस भेजे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैडम, मुझे पेटे सर का जो शो था स्वर बहार, उसमें एक चित्रपट एक गुंजन था वो, सॉरी, उसमें मुझे प्रेम रोग फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए, और आपका भी शो बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्यारा लगा। आखिरी में चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, ये गाने की लाइनें अगर आप मुझे सुनवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैडम, आपने मुझे कभी भी गाना नहीं सुनाया है, इस बार सुनवाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर। आणि जसं की असं तुम्ही खूपच मनाला लावून घेतलं, एवढं मनाला लावून घेऊ नका। काल खरं तर माझं देखील मूड तसा नव्हता, पण माझ्याकडून देखील चिडून थोडंसं बोलण्यात गेलं, आणि खरं तर मी त्यांचं मनावर पण नाही घेतलं, पण कधी कधी थोडंसं माणूस

बारिश की चंद बूंदे पड़ी तो मची इस तरह धूम, सभी जवां दिल सभी हसी दिल।